सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कदका। ब्रह्मा विष्णु श्री है अगनत तिनको मोह पया मन मदका। 84 लाख जोन उपाई रिजक दिया सब हूं को तदका। सेवक कै भरपूर जोग जोग वाहिगुरु तेरा सब सदका। वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसा आप ही चितवै आपे चंद सूर प्रगासा। आपे जाले आपे थल थमन आपे किया काट काट वासा। आपे नारे आपे फुन नारी आपे सारे आप ही पासा। गुरमुख संगत सब बेचारो वाहो वाहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड मेल तमाशा। वाहिगुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पूर रहा अमृत मीठे जां के बचना। मने परम आदि क्रूर दराद काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाया परमार्थ सत संगत छेती मन खचना। किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत ना दिया जिस कोई ना जाने। शिव ब्रंच तर ध्यान तेजस वेद बखाने। निरंकार निरवैर अवरनी दूसर कोई भंजन गढ़न समर्थ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गै करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को। फुन धर्म तुझा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को। मथरा जन जान कई जी साज सोय और कछु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड्डो कल मैं पव सागर पार उतारन को। संत ते सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है। धर्म पंथर उतरनी तर आप रही लिव धारन तावत है। मथरा पन पाग भली उनकी मन क्षति फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कांजो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द रंग प्रगट दिन आगर। गैर गंभीर था अत बड़ सुबर सदा सब बिदरत नगर। संत मराल करे कंतूल तिन जाम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर।

दासें तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ पुण कीर्तवान सदा सुख संपत रे देवर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बडो अतवंत महा बल सेवक दास कयो तथ ताए का परवा का हो की जा के बसीस तरियो गुर हाथ तीन पवन पर पार रहो सोई अपन सरज कियो ना जगत कोई अपने आप पे उपायो सुर नारिया सोरे अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सरे असुर नार गण गंधर खो जंत फिरे अबनासी अचाले अजोनी संभु पुरखो तमया पार परे कारण कारण सम्राथ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो श्री गुरु राम दे जयो जग जग मैं तै हर परम पद पायो सत गुर नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्योही

शरणाई मोह मल बेस कियो काम गाय के छाड़ू क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान सो चाड़ू जन्म काल का जोड़ हुक्म जो हुए सो मन्ना भाव सागर बंदे सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तख्त जोग भोग संजुत बल गुरु रामदास सच सलपन तू अटल राजे पग दल तू सतगुर चो जुगियां पापे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सिविन तुरो तुर आज गा।

चरण सवैये महल्ले पंजवें के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरन सोई पुरख अचोले बनासी जिस सिमरत दुरमत मलनासी सतगुर चरण कमल रिद धारंग गुर अर्जन गुण सहज बेचारंग गुरु रामदास कर की ओ परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जास वा खाण्यो भगत जोग को जैतवार हर जन को पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लागे उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़पागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोख्यो गुरु नाम दरड़ायो आगम अगोचर पार ब्रह्म सत गुर दर्शायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनुभव ठहरायो जनक राज बरताया सत जोग आलीना गुर शब्दे मन मान्या अपदेज पतीना गुर नानक सच नीम साज सत गुर संग लीना गुर अर्जन कर गुर रामदास अपरंपर बीना खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख सामा चरियो बिमल बुद्ध सतगुर समान हो अजूनी संभव्यो सो जास कल कवियन बखाण्यो गुर नानक अंगद वरियो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जन वरो पारस परस प्रमाण सद जीवन अर्जन मोल अजूनी संभो पै पंजन पर दुख नवार अपरे अनंबू

पछतायो तत विचार ये मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन घर बनायो काल समुंदर भय रूप प्रगट हर नाम उदारन बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल भेख अपारतास विनवरना कोई मन बच जिन जान्यो भयो ते संसर सोई तरन गगन नवखंड मैं जो सरूपी रहो पार पन मथुरा कछ भेद नहीं गुरे अर्जन प्रतख हर अजय गंग जाले अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचिया वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुरे अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुरु गुर रामदास हर पै गयो हर बंस जगत जस संचरियो सो कवन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर संघासन दियो श्री गुर तै बैठायो रहस कियो सुरदेव तोए जस जय जय जम पै असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरों के गुर रामदास जिन पायो छतर संघासन पिरथमी गुर अर्जन को दे आयो

मन मैं चुरै राम चंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग। भूला दैंत न समझई तिन प्रभ किए काम नानक बे परवा सो किरत न मिटे राम।

जाना पानी नाल हां जै सेती मेरा संग जित डिठै तन पर फड़ै चढ़ै चवगण वन। रज ना कोई जीव्या पहुँच ना चलिया कोई ज्ञानी जीव है सदा सदा सुरती ही पत होए। सर्फ है सर्फ है सदा सदा आए वै गई विहाए नानक किस नू आखिए बिन पुछया ही लै जाए। दोष न देओ राय को मत चलै जा बुढ़ा होवै गल्लां करे कनेरियां ताने पवना खाती टोवै। पूरे काकी

कछुना जाए। जिनको कृपा धारियन तिना सतगुर मिलया आए। सतगुर मिले उल्टी पई मर्जी व्या सहज सुबाई। नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए। मनमुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई। कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई। बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़े दूजा भाई खुआई। जो बन जांदा नदर न आवई जर पहुंचे मर जाई। पुतक लत मोहित है अंते बेली को ना सखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए।

नहीं, आए गए पछताए। चिंता तापत रह गए ता मन पया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है सा तन सुती निचिंद। जिनको पूर्व लिखिया तिना पेटिया गुर गोबिंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पान।

शब्द मरा सोई जन सिजाए, बिन शब्द मुक्त ना होई। भेख करे वो कर्म बगुते, पाए दूजा परज बगोई। नानक बिन सतगुर नौ ना पाया, जे सो नोचा कोई। हर का नौ अत वाडी उचा, ऊची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई, जे सो लोचा कोई। मुख संजम अच्छा ना होवई, कर भेख पवै सब कोई। गुर की पौड़ी जाए चढ़ै, कर्म प्राप्त होई। अंतर आए वसै गुर, शब्द विचारै कोई।

व्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रल मुए, इना हाथ नक थाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करहै, मन हृदय कपट कमाए।

हर हर कृपा धार प्रभु, जन नानक जप हर नाम। तनाजरी तनवंती जानिए पाई, जा सतगुर की कार कमाए। तन मन सौंपै जी सो पाई, ले हुकम फिराओ। जै बैसा मैं बैसै पाई, जै भेजै तै जाओ। ए वड धन हो।

सदा सच्चे का संग रहाओ। पैनन गुण चंगे आया पाई, अपने पाद के साध आपे खाए, तिसका क्या सलाही है पाई। दर्शन को बल जाए, सतगुर विच वड़िया वड़ियाइया पाए, कर्म मिले ता पाए, एक हुक्म मन ना जाननी पाई, दूजे पाए फराए, संगत ढोई ना मिले पाए, बैसन मिले ना थाओ, नानक हुकम तिना मनाए सी पाए, जिना तुरे कमाया नाओ, तिन विटो वारिया पाई।

आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तम पाया, सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्द तां गाव हूँ हरि केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ई मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गलां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करतां तेरा सब किश है, जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजी शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाईयां, करसांत सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो हो, जिस दिया एह वड़ियाईया। कह नानक सुन हो संतो हो, शब्द तरहु प्यारो, साचा नाम मेरा आधार हो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंचदूत तुद वास कीते, काल कंठ कमारिया, तुर कर्म पाया, तुजिन को से नाम हर कह लागे। कह नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुन हो वड पागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संतापित। सुनी सची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुर तेजा सुनते पुनीत, कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुदया गै अरदास।

पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोलबाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, भरोसा दान, धन सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा, मत उची, मत दा राखा, वाहिगुरु ही अकाल पुरख, अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे माण, नेताणिया दे तान, नेवटियां दी ओट, सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ महाराज, आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अरदास बेनती जोदड़ी है सतगुरु जी। जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाहे, कल्ले आवह नानका सदे उठी जाहे, जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दे महावाकां अनुसार सतगुरु जी आप जी दे दर कर दे सेवक बीबी संदीप कौर जी, धर्म सुपत्नी सरदार रशपाल सिंह, सतगुरु साहब जीओ आप जी दे हुक्म सदका जिन्नी स्वासां दी पूंजी लै करके संसार ते आए हन, भोग करके आपने आप जी दे चरणां दे विच जा विराजे हन। सतगुरु जीओ तिन्हां दी आत्मिक शांति दे निमित सतगुरु जीओ परिवार वल्लों परसों रोज तों श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाए गए पातशाह जीओ, बाणी आ तों मध मत तों संपूर्णता तक आप जी ने कृपा करके सेवावां लईयां, गुरबाणी उचारण करदिआं आप जी दे हजूर सेवावां निभाउंदिआं हाजरियां भरदिआं धोईयां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शिश करनी, राम कली साध जी दे पाठ होए छे पौड़ियां, आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी, अगे तों सुध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन दी दात बख्शनी, पढ़ी सुनी बाणी दा भाव बीबी संदीप कौर जी दे नमित आत्मक कल्याण वास्ते आत्मिक शांति वास्ते अरदास बेनती कृपा करनी, सतगुरु पिछे परिवार नूं भाणा मनन दी दात बख्शिश करनी, बच्चे नूं चढ़दी कला दी दात बख्शिश करनी, आप जी ने समूह परिवार अंदर बल बख्शिश करना। सतगुरु साहब जीओ आपसी प्रेम इतफाक बख्शिश करने, सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर रूह कल्याण नमित सतगुरु जी आप जी दे स्थाना ते समूह परिवारां ने हाजरियां भरियां हाजरियां दर प्रवान करनियां, सुंदर पोशाके हाजर हन दर प्रवान करने, पर सतगुरु जी लोक परलोक पड़दे कज लैने पातशाह जी ओ कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है दर प्रवान होवे, परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शिश करनी, सतगुरु जी कृपालता करनी, कहत कबीर सुनो हुरे संतो हो, खेत ही करो निबेरा अब की बार बख्श बंदे को, बहुर नाम भवजल फेरा वाली कृपा करनी, सतगुरु जी ओ आप जी करो कृपा पावन हुक्म बख्शिश करके संगता नू निहाल करो, सतगुरु जीओ गुरबाणी कीर्तन दीवाना विच आरंभ करन दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही। आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बणत बनाई फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यो मन मानिया हर सर्व निरंतर।

कहे कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो न बेरा, अब की बार बख्श बंदे कहो बहो ना पाओ जुल्फे लसा तू कृपा करन। विछड़े रू भैन संदीप कौर जी नी भी कल अपने चरना कमला बच्चे निवास बख्शिश करन, पिछे परिवार को भाणा मनण का बल बख्शिश करन। ये अरदास सब ने करके जानी है जी। आओ हुण कुछ समय लई सत्कारयोग ज्ञानी रविंद्र पाल सिंह जी आओ रल के हुण हुक्म होया आनंद साहिब दी बाणी जाप करन दा जी। आपां सड़क रल के आपां आनंद साहिब दी बाणी दी जाप करिए जी। उपरंत सारे ने अरदास करनी सतगुर कृपा करन विछड़ी रूह नूं अपने चरणां विच निवास बख्शी करनी जी।

नह बारिक नह जुब नह बिरदी कछ बंद ओह बेरा नह बुझिया जो आए पर जम फंद फरीदा दरिया वै कन्ने बगुला बैठा केल करे केल करिंदे हंज नो अचिंते बाज पए बाज पए तिस रब दे किला विसरिया

नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल अकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उतार जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ परस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस मन में प्रीत निरंजन, दर्श पर त्रय रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हित कर न सुने, काहू की निंदा सब ते जाने, आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो, सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए पिन, कर्म करत हुए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवर नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते विनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल को वै, तिस भगवती कीमत उत्तम हो वै, भगवंत की ठहल करे नित नित, मन तन अर्प बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रभु दे, राम नाम आत्म मैं सो दे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नाय आवे, वेद पुराण सिमृत बुझे मूल, सुखम मैं जाने अस्थूल, चह वरना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा उदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उरतारे, पस प्रेत मुग्ध पात्र कौतारे, सर्व रोग काउ कद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत किते ना पाइय धर्म, नानक जिस मिलै, नानक तिस मिलै, जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान,

रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे। कबहूँ होय पंडित करे बखियान, कबहूँ मोन तारी लावे ध्यान, कबहूँ तट तीर्थ स्नान, कबहूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहूँ कीट हस्त पतंग हुए जियान, के जौन परम परमीय नाना रूप ज्यों सुवांगी दिखावे, ज्यों प्रभावै तिवै नचावै, ज्यों तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय। कबहूँ सा संगते पावै, उस स्थान ते बौरना आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जलिया एक खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। श्लोक सुखी।

0: अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुहान जो जाने मैं जो बनबंत सो होवत बिष्टा का जानते आपस को कर्मबंत कहावे जन्म मरे बोजोन प्रमावे तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्ति आगे सुख पावे धनवंता हो कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे बोलस करमान के ऊपर करे आस फल पीतरता का हो विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हो जाए पसमंत किस न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरतारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतारे अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै हर दरगे को कैसे गवै आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जा का मन होए कहु नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जब इह जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नेह चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हौ छूटै सहस खटे लख कौठ धावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनिक भोग बिख्या की करै नह तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ ब्रिथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ का विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बूझै देखै करै विवेक आपह एक आपह अनेक मरै न बिन सयावै न जाए नानक सद ही रहे असमाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचै सब के साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कछ उसका हो करने हार उसते पिन कहो किश होए थान थनंतरी कै सोए अपने चलित आप करने हार कौतु करे रंग पार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप आत सुंदर अपार नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोए संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संत कै दुखन कागजों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब कुछ चलै संत कै दुखन तेत सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दोखी का थाउ को नाही नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महातताई संत का निंदक खिंटिक न पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखिया रदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दोख नानक संत पावे तो उसका भी होय मोख संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसा का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महाकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुखते टरै, संत दुखी को थनाई ठाव, नानक संत पावे तलय मिलाए, संत का दुखी अद बीज दे टूटे, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान परमाइय, संत का दुखी उजड़ पाइय, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृत की लोक था, संत की दुखी की जड़ किश नाही, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न राखन हार, नानक संत पावे त लय उबार, संत का दुखियों बिललाए, ज्यों जल बिहूण मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों ईदन पाव ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहिं दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, संत निंदका तुरही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का निंदक बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख न त्रिष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया कीर्तना मिटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याव सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहा विचार, जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़भागी, नानक जन से श्लोक तजहो सियानप सुरजन हो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जायस्तपदी, मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिया रहे अगाए, बहुन तृष्णा लागे आए, मारे रखे को आप, मानु कै किसनाई हाथ, तिसका हुकुम्बू सुख होए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिगन न लागै कोय, उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटै पाप जपिया हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह है, नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा

ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार्य कछ न दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वरण चिहिन्ना जापत तब हरक सो कह किसे व्याप्त जब आपन आप आर ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेला पर तीजा नानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी जब एक हर यज्ञ अपार तब नरक सुर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए तब शिव

कहो हो कि तथाए। जब आपे आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही परजा। जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कह कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसे भूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कहाँ को चीन। जब अपन आप उतारै तो सगन अपसगन कहा विचारै। जय आपन उच आपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानु आप। जय छल छेद भेद समाय उहां किसै व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जय एक कह एक एक भगवंत तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप तियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत उचते उच्चा नानक आपस को आपे पहुचा। जय आप रचियो प्रपंच अकार तेह गुण मैं कीनो विस्थार। पापुन ते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल होमै मोह भरम पै भार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानक एकै। जय अभिगत भगत तह आप जय पसरै पासार संत प्रताप। दुह पाह का पितनी उनकी शोभा नुहू बनी। आपे कौतुक करै अनद चोज आपे रस भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथाह अगणित अतुलै ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथें आप सुनने हार आपे एका विस्थार। जातिस भावै तां सृष्टु पाए अपने भाणे लए समाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए। जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का देता। जी जंत्र सब ताकै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राखे दस कोय न मारै सुमुआ जिस मनु बिसारै। तिस्ता जे अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाकै सब हाथ अंतर बाहर जन हो साथ। गुण निदान बेअंत पार नानक दास सला बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जीअन बहु भात जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस पावै तिस लय मिलाए भगत करह हर के गुण गाए। मन तन मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक कै नाए तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार जाकै मन बसया निरंकार। बंधन तोर पय निर्वैर अंदिन पूजह गुर के पैर। इह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत् करहु विचार दुर्लभ देह का करहु उधार। अमृत बचन हर के गुण गावो प्राण तरन का है स्वाओ। आठ पैर प्रभ एखो नेरा मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा।
ਸੁਣਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੋ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਇ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਤਿਸ ਸਾਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਉ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰਗਹਿ ਨਿਬਹਿ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ, ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਹਿ ਜਾਹੇ, ਤਿਸਤੇ ਦੂਰ ਕਾ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਬਰੈ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਧਿਆਏ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ, ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾਵਦ

पूरे गुर का सुनि उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोविंद, मन मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अगन सागर तरहो, हर तन के परले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वह नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का इह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, उमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ का जय, प्रगटे गोपाल मात के माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, सरन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न पए गुरुदेव, पूर्ण होए सेवकी सेव, आल जंजाल विकार तिरहते, राम नाम सुन रसना कहते।

हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दे मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा।

बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही पूपा अंडज जीरज से तजकीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हमें बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव आव रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला रुष्ट रिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताव तनिक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िला। सुने गुंग जो याहि सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजै, अर्ध सहस फुनतीन कहिजै। भाद्रव सुधि अष्टमी रवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरु तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाईया

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे धारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ये वस्त तजी नह जाई नित नित राखे उतारो।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्या

इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम ते नाम सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम

नित ध्याई है हर पुरख निरंजना रहा, जह हर सिमरन पया तह उपादगत कीनी, वड भागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी।

प्रिय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिख दुख संदी नूर अरसों पुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर सहांद साहो जिस पास बहिठिया सुहिया सब नाम दावे साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी

चंद्र जी। आप नारायण कलातार जग मैं परवर्यो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, जह कह तह भरपूर सबत दीपक दिपायो, जे सिख संग्रहो तत हर चरण मिलायो, नानक कुल निमल अवतरियो, अंगद लहने संग हो गुर अमरदास।

0: क्या विचारे।
1: सोई सोई सदा सच साहिब सचा सची नाई,
0: रचना जिन रचाई।
1: रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई, जो तिस भावै सोई कर सी हुकुम न करना जाई। हमदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत। भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजे नाद, संजोग विजोग दो कार चला वह लेखे आवे भाग। एका माई जुक्त व्याई तिन

0: अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार एक दू जी पाव लख हो लख होवै लखवीस
1: जगदीश
0: हे त्राहि पद पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस
1: जोर चुपे न जोर जोर न मंगन ते न जोर
0: जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राजमाल मनसोर
1: सुरति ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटे संसार
0: जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए
1: पवन पानी अगली पाताल
0: इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निसान धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
1: पवन पानी वै संतर केते कान महेश
0: केते बरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेस
1: करम भूमि में केते केते तूप देस
0: केते चंद सूर केते केते

0: कोट इंद्र इंद्रान सहाय सहान गणिज
1: त्रे पवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत
0: तब सर्व नाम कथे कवन करम नाम अनत सुमत।

0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
1: अंगी प्रमाद समस्ति बकुते
0: कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे
1: राज अजेश्वर प्रभु रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे
1: राज अजेश्वर परम प्रदे
0: नमो अशस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते
0: नमो नित नारायण कूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे
0: नमो

0: नमो तंत्र तंत्र
1: सदा सच्चिदानंद सर्वन प्रणासी
0: समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा बिरत करता परम परम परमेश्वर प्रोच पालन
0: सदा सिद्धदाता दयाल
1: अछेदी अपेदी नाम न काम
0: समस्त पराजी समस्त स्तुताम
1: तेरा जोर चाचरी चांद जले है थले है अपीत है अपे है
0: प्रभु है अजू है देश है अपेश है
1: पुजंग पर्याद चंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे
0: नमो सर्व माने समस्त निदाने
1: नमस्तम निर्नाथे नमस्तम परमाथे
0: नमस्तम
1: अकाले नमस्तम अपाले
0: नमो सर्व देशे नमो

0: ग्वाल चांत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरक अपार
1: देव उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल
1: रूप रसाल
0: नाम ठावना जात जाकर रूप रंग न रेख
1: खुदार मृत जो नाद
0: देश और न पेश।

अनेक दर्शन कीन रूप अनेक दे प्रेम न जानिए जय वेद और कतेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बही लोक चौदह के बिखे जग जापिए जय जाप परम रूप नीत मूरत पूरन पुरक अपार काल हीन कला संयुक्त काल पुरक आदेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम आप रूप अमिक अनुस्तत एक पुरक अवधूत अंग हीन अपंग अनात्म एक पुरक अपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक्ष

मधुपार चंद तब प्रसाद गुणगन उदार मैं माँ अपार अनपो प्रकाश निज दिन अनासन राजान राजपान नान पान इंदान इंद बालान बाल अनपूत अंग अबा अबंग मुन मन गन मुन मुनगन पर नाम ने पै निकाम अलिश्यत करम अदृश्य तरम चाचरी छंत्र

0: भगवती चंत प्रसाद कत दे के आज जदे से के आबे जबे से
1: गंज कर में गया मंज पर गया
0: बिज लोके के आदित सो के
1: दूत बने के भी भूत कर गया।

0: राजा करी बोलने वाले
1: हरी मुस्कान है राज सुल्तान है
0: कलंकन पर नास है समस्तुल निवास है
1: अगर तो गरीब है चाहे गरीब है
0: समस्तुल जुबान है कि साहिब के नाम
1: है तेरा तुम नास है समस्तुल निवास है
0: ये सरबुल गवन है हमें सुल रवन है
1: महाभ तमीज है समस्तुल अजीज है
0: परम परम ईश है समस्तुल अधीश है
2: अदेश और अनेश

0: सवारे
1: कोट तो रंग को रंग से कूदो तो पौन के गौन को जात निवारे
0: हारी पुजान के पूपली बिदन्यावत शीश न जात बिचारे
1: एते पहे तो कहां पे पूपत अंत को नागे ही पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है राज हजारे
0: भूत भविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के।

0: मान मलेंगे,
1: श्री पद भगवान के पावन त्याग जहां निदान चलेंगे।
0: वीर पार बड़े बरे यार बिचारे सार की धार पछैया,
1: तोरत देश मलेंद वासन माते जान के मान मलैया।
0: माड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया,
1: साहिब श्री सबको सर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया।
0: मानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे,
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे।
0: पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु कुंज खपेंगे,
1: सास रूप प्रसन्न फिरे जग सत्र समय अब लोक छपेंगे।
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जों तिर लोक को राज करेंगे,
1: कोट स्नान गजाज दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर बिशन सचीपत अंत फसे।

0: सुखी बसे मोरो परिवार सेव सिख सबै करतारा
1: मोरे छाने कर दे करिए सबै रंग को आज सिंह करिए
0: पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
1: मैं छाड़ कर अभनते आओ जो वो जा सु तुम ते पाओ
0: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है
1: आप हाथ दे मुझे भरिए मन कर कर त्रास ने भरिए
0: तू जो सदा हमारे पक्ष श्री तुझ

0: कथ कहानी।
1: हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया,
0: चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे
1: माया मोनी जिने एक परम पुलाया,
0: माया तो मोनी तिने कीती जिन ठगौली पाया,
1: कुर्बान कीता तिसे मिठो जिन मोह मिठा लाया।
0: कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया,
1: हे मन प्यारे तू सदा सत सुमले।

0: सुनर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया
1: पाया अमृत गुरते पाकी सच्चा मन वसाया
0: जी जन सब तू दो पाए एक वेग प्रसन्न आया
1: लाभ लोक अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
0: कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी विकम मार चलना
0: लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना
1: खन्यो दिखी बालो निकी एक मार्ग जाना
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी
1: कहे नानक चाल भक्ता जुगो जुग निराली
0: जीव तू चलाए तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे
1: जीव तू चलाए तिव चले जिना मार्ग पावे
0: कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे
1: जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरु द्वारे सुख पावे
0: कहे नानक सच्चे साहिब जीव पावे तिवे चलावे
1: यो सोहिला सब सुहावा संतो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया
0: एहो तिनके मन वसिया जिन तुरो लिखिया आया कहे नानक सबद सोहेला सतगुरु सुनाया हर ते आया पवित्र होए गुरमुख जिनी ते आया
1: माता पिता कुटुंब सहित सो पवित्र संग सवाया
0: कहंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
1: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर ते आया
0: कर्मी सहज न उपजे विण सहजे सहसा न जाए।

0: बालक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा इव जाए।
1: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो का मैले तिनी जनम जुए आरे।
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारे
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुड़।

तुम मात पिता हम बारिक तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे तुम ते हो सो

अहनिस सहज सुभा दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसम दी।